0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया। हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन। फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिम्मी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
3: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है, अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी ए रोमांचक अते विहारक संपूर्ण अते उत्साहपूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वां हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिजम दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी वी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिजम योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिजम दी खोज करो। चिजम बेहतरी लई RTO 0260।
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दियां वीजा लोड़ां लई इक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
5: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
6: ये हिंदवी स्वराज जवाब है ही तरशींचा।
7: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
8: Baljeet, vyaah waste jewelry dekhan tunna jewelers chaliye.
9: Yaar, unna da Dandy Nong wala store na bada hi door hai.
8: Oh, hun tension nahi. Hun Dandy Nong to ilawa apne ilake Saint Albans vich tunna jewelers store khul gaya. Ohi parosa te 30 saal to vadh variyan da experience. Ready-made gold, diamond te silver jewelry de naal naal aapa banwa sakde haan customized jewelry vi. Tunna jewelers. 9 Main Road West, St. Albans, Ate 341 Lonsdale Street, Dandenong. For more info, call 0499-2535-45.
0: Creative events leke aa rahe ne saal di sab to intezaar kiti gayi sangeetmay sham, Heritage Tour 2026, Dr. Satinder Sartaaj.
10: Ho lawa ishq de ambri udaariyan, mainu pyar diyan jadiyan khumariyan.
0: 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा,
0: चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: ਫੇਰ ਪੀਟੀ ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, TR, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 045-151-1100, 045-151-1100। Desire migration. Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger. Ranger Super Duty. Everest te Sadabahar Mustang. Brand new demo te quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options be available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Corey Nal. Radio Hanji de hawale nal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford. Ready, set, Ford.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
6: हां जी रेडियो।

0: फ्रेंड्स, मैं किया रेनी। साल दी सब तो इंतजार की थी गई संगीतमयी शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
1: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां।
0: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लई कॉल करो 04268094999। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
2: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 04 99 25 35 45।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
4: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654992।
5: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
6: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
7: ये हिंदवी स्वराज जवाब है ही तरशीन चेचा।
8: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
9: Pandey ji, kya tu sala luck paaye ho yaar? Ek dost ke saath pakde gaye aur dusri dost chhudane chali hai aur ye teesri dost hi hai na?
10: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़ेया।
2: आज सिम्मी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।
0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ਬਿਲ ਬੰਦੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਜ਼ ਲਿੰਟਲਸ। ਓਜ਼ ਲਿੰਟਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਲਿੰਟਲ, ਟੀ ਬਾਰਸ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਨਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲਸ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਕਟ 0423102900, ਈਮੇਲ sales@ozlintels.au। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੋਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਾਮਾ, ਪੇਰੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 0490054596। ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ.com.au ਤੇ ਜਾਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
1: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
2: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
3: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हीतर श्रींची इच्छा।
4: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
5: Mera Desh Incredible India, Trugnina vich, apne har pehn bhra nu unna de desh da swad ate masale ethe de reha hai. Tusi ethe Indian masale, daalan, grocery da har saman, wajib rate te le sakde ho. Pao cosmetic di har item vi, nale ghar vich hove koi function ya tyohar, mithai di ethe milegi tuhanu variety beshumar. Grocery di home delivery layi number likh lo, 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
6: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
6: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रॉस स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: प्रीत की होया?
9: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना दिवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, टीआर, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0454-151-1100, 0451-51-100। Desire Migration Creative Events लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमयी शाम Heritage Tour 2026। डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
10: ओलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां मैनू प्यार दियां जड़ियां खुमारियां।
0: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
11: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
12: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
13: नीरू
12: बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
14: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले गए और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
15: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो
8: 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
13: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
15: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
13: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
15: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
16: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
17: सोना चाहिदा,
18: भरोसा चाहिदा,
17: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
19: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
20: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालता छे।
21: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
22: मैं उठों भी मुड़ के हूँ जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
19: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
21: Hun vekhna na bhullo 15 mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
23: Youth Justice Worker de taur te tusi hirasat vichle naujawanan di sahayata karoge. Eh ik surakhit naukri hai jis vich tankha samet training ate tarakki de mauke shamil han. Je tusi ik sahayak team naal safal ate santushti bhare peshe di bhaal kar rahe ho The Youth Justice Careers लिख के भेजो। Authorized by Victorian Government, Melbourne.
24: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
25: हां जी, हां जी, ओए हां जी, हां जी,
26: हां जी, radio.

0: की होया? इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
1: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़िया।
0: आज सिम्मी भैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। प्रीत क्या हुआ?
3: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0451-1100, 0451-1100। डिजायर माइग्रेशन।
4: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
6: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
7: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
8: ये हिंदवी स्वराज जवाब है, ही तर्श्रीं चेच्चा।
9: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
2: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालत ने।
3: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
4: मैं उठों भी मुड़ के जितों कोई नहीं मुड़ के।
1: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
3: उन देखना ना भूलियो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू इदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी वेखण तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
4: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपां बनवा सकदे हां कस्टमाइज ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45।

0: जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी
1: दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना, जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
2: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज। मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इनफॉरमेशन लई कॉल करो 0426809499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
6: हां जी।

0: see your films, leke aaye ne action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiya Shera, te mudiya vi kede haath ta chhe.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yogra Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke hunda.
0: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghar vich Shera.
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
8: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
9: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
7: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
10: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
11: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਨ ਵੱਲੋਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜਿਸ ਚੁੰਮਦੀ ਨਾ ਥੱਕੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਜਿਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਾਈ, ਉੱਠੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਰਾਤਾਂ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ, ਸੋ ਜਾਨਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜੜਦੀ, ਖੁਰ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਹੱਡ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਏਗੀ ਸਦਾ ਹੱਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ, ਰੁੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ, ਰੁਕ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਦੇਖ ਕਿਹਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

0: इवेंट्स लेके आ रहे हैं। साल दी सब तो इंतजार की गई संगीतमयी शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सत्येंद्र सरताज। सतारह मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लिए कॉल करो 04268094999। फॉर टिकट विजिट tiktek.com.au।
1: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू बारे दसन लई।
1: होर सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।
2: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाए इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
3: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
4: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा।
5: ये हिंदवी स्वराज जवाब है।
6: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
2: आज सिमी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8330-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
4: सूरज देवता
3: की मतलब?
4: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्ना ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्ना दी सेविंग्स वध गई।
3: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
5: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
6: इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू इत्थे परदेश विच समझाऊंगा किवें।
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
8: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
9: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।
0: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुश खबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कांटेक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
10: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
0: प्रीत की होया?
11: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा है इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवान थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नू। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, टीआर, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100 0451-1100। Desire Migration।
12: JBCO Films leke aaye ne action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
13: 5 saal baad mudiya Shere. Te mudiya vi kede haalatan ch.
14: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
15: Main utthon vi mud ke aaya.
12: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
14: Hun vekhna na bhullo 15 Mai ton tuhade nedle cinema ghar vich.
16: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
4: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
5: ओलावा इश्क दे अंबरी उड़ारिया, मैनू प्यार दिया जड़िया खुमारिया।
4: 17 मई 2026 शाम 6 बजे, मेलबर्न दी शान, रोड लेवर अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लई कॉल करो 0426-809-499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
6: पांडे जी, क्या तू फाना लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले हैं, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
7: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: ਫੇਰ ਪੀਟੀ ਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
1: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਜੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, PR, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 045-151-1100, 045-151-1100। Desire migration.
2: Tension, nidi tension.
3: Ki hoya?
2: Athe immigration de enne pange ne yaar, mukde hi nahi.
3: Kaka ji, tension chaddo, phone chakko, call karo VY immigration nu, jithe immigration expert Harpal Singh Bajwa, employer sponsor, partner ya parents, ya visa, skilled migration, student visa, MRT ya RRT appeals te skills assessments de mahir baithe ne. Hune hi appointment li call karo 0410-530-530
2: ya 90-77-97-33
3: ya email info@vyimmigration.com.
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस करियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
5: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
6: ये हिंदवी स्वराज जवाब है ही तरशीन चेचा।
7: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
1: Ki chahida? Australia da visa lona? Ja visa le mashwara chahida? Mil juga. Sidde aao, Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diyan visa loda le ik parose yogna. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, DAMA, parent, partner te visitor visa vich deal karde ne. Hune call karo Pritinder Garewal 0490-054-596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
8: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
9: सूरज देवता
8: की मतलब?
9: ओ कमलिए, सन करंट वालिया तो जदा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
8: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
9: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
1: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
10: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पैन जी आए सी, उना ने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
10: अच्छा, असि भी उना नु कांटेक्ट कर दे फिर ता।
1: जेकर थानो भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी with an industry leading 24 month price lock. Aaj hi pahuncho Orbit Homes Display Centers ya call karo Harpan Chauhan nu 0433-280-252 te, 0433-280-252 te. Sona chahida?
11: Bharosa chahida?
1: Quality te buyback vi chahida? Chale aao Delhi Jewelers Stockland Point Cook vikhe jithe 22 carat gold, classy silver, dazzling diamonds ate gemstones, custom jewelry thode order te ready. Purana sona buyback and exchange turan. कैश चाहिदा? गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ ਕਾਲ 0493536042।
11: ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ?
10: ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਏਟੀ ਅਪੀਲਸ,

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: रेडी सेट गो। चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो। बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
4: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
5: मैं उठो भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
2: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
4: उन देखना ना भूलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया,
3: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: VY Immigration and Education Consultant,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
6: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
7: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
8: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
1: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
9: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के।
7: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
1: हुन वेखना ना भुल्लियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
10: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
11: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: दिन रहमत हुई।
1: मैंने तो लगता है ये वाला सॉन्ग कुछ इस तरीके का है, तुसी हेडफोन लाए हो तो दुनिया की कोई परवाह नहीं है, या तुसी बाथरूम च गा रहे हो गाना
0: आ हो गया गाना। उस तो अलावा पटाका गुड्डी जा एक और बड़ा मेनू बहुत वधिया लगता वेलो एडा वधिया लगता भी चेते भी नहीं आंदे
1: नहीं कई सारे इदा दे सॉन्ग्स है जिहड़े तुसी सुनदे हो तुसी उस जोन च चले जांदे हो एंड एवरीथिंग इज ब्लड।
0: हां मेनू ट्यून चेता आ गई तुसी गेस करियो नहीं तो यही आई जान दे यार
1: की करन दे
0: ओ दे विच नसरुद्दीन शाह आ एंड ओ दे विच ओ भी आ जेड़ा यार ओ दे नाल हुंदा मुन्ना भाई एम बीबीएस
1: इश्किया वाला डेढ़
0: इश्किया वाला गाना ओ वाला ओ
1: वाला गाना मुझे भी नहीं याद आ रहा पर मैं भी वो वाइब समझ गई हूं इसकी बात कर रहे
0: हो। ओ माय गॉड
1: सो वो भी नमक इश्क का भी बड़ा पसंद है जिनकी नई नई शादी हुई है और फिर जब उनकी वाइफ भी आती है पीछे पीछे तो फिर वो उनके लिए सूट होता है गाना।
0: पर फिलहाल गीत आप सुनते फ्रॉम द मूवी सात खून माफ जिस दे विच आवाज सीगी
1: उषा उत्तप
0: कोरिया जाके बार दे विच काम कीता एंड उत्थे केड़े गाने गाए जांदे कोरियन।
1: अच्छा वाओ
0: मोर देन मैं शायद घट कह रहा पर 13 तो ਵੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਲੇਡੀ
1: ਵਿਦ ਲੋਟਸ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ
0: ਯਾ ਐਂਡ
1: ਇਵਨ ਉਨਕੀ ਮਿੰਦੀਆਂ
0: ਬਟ ਗ੍ਰੇਸ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਗਿਵ ਅ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬਿੰਦੀ ਊਸ਼ਾ ਉਥਪ ਐਂਡ ਹਰ ਲਵ ਫॉर ਬਿੰਦੀਸ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਵਿਦ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੌਇਸ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਐਸੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ
0: ਅਲੱਗ ਹੈ
1: ਹਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ।
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਯੂ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
1: ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਝ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਟਿਲ 2026 ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਮੇਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਆਤੇ ਹੋਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਹਿੰਦੀ
0: ਪਰ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਟੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕੀ ਬੜਾ
1: ਕਲਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ
0: ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ
1: ਡਰਮ ਰੋਲਸ ਪਲੀਜ਼।
0: Yes, that's enough.
1: हाँ जी हाँ जी बहुत भूमिका बांधी हमने अब बात
0: की जाए। बस केड़ी फिल्म पढ़ा आज साडे कोल
1: पहले तो मुझे लगा आप हाल चाल पूछ रहे हो मैं भी ठीक हूँ आप
0: कैसे हैं how's your health how's wealth how's everything
1: सब कुछ बहुत बढ़िया एक नंबर।
0: मैं सुनी तुसी ना वीकडे ते ओ भी कीती ही ना नीरू बाजवा दी इंटरव्यू वेरी नाइस वेरी गुड सुने दोस्तों नीरू बाजवा जी दे नाल इंटरव्यू आ याशी दी एंड द मूवीज
1: जवाक इन्हां दी मूवी आ रही है जवाक ते अपने जवाकां नूं लैके जाओ ते मदर्स डे इंजॉय करो जवाक मूवी वेख के फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है।
0: तुसी भी इदां कर रहे हो मदर्स डे सेलिब्रेट व्हाट्स योर मदर्स डे
1: मेरे बच्चे ने कहा इट्स सरप्राइज मामा
0: हां सरप्राइज दे विच तुहानूं कार्ड मिलूगा
1: ब्रेकफास्ट इन बेड मिलेगा जिहड़ी बणाण के सरदार जी
0: हां जी हां
1: but I love it every year it's same I love it
0: that's nice so chote chote effort oh nikke oh bada sona mainu gaana ja is cheez te lagda hunda itni si hasi
1: ha
0: itni si khushi itna sa tukda chand ka
1: main nahi ga sakti yaar
0: kyon
1: ye humse na ho payega
0: le tada miluga kaan sujja nahi ta nahi ga sakta
1: नहीं नहीं मेरी आवाज ही नेचुरली कह लो फटी हुई है बूपर खराब है गले के
0: पर आपा ना फिल्म तो पहला गल करन बारे ना आपा तानू फिल्म दा गाना ही सुना देने हां क्योंकि ओही दस दो तानू पे आपा केड़ी फिल्म दी गल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
0: एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवी
1: योर्स नॉट एवरीवनस
0: या
1: माइन टू

0: जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है हितर श्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
4: Wow! Teri sabji di khushbu ate taste vich kuch ta kamal hai. Mainu vi dass de secret.
5: Amrit, ek kamal hai Gold Leaf Dairy de pure New Zealand ghee da. New Zealand vich free range grass fed gaawan de dudh to taiyar. Na ta is vich oil, na hi koi color, hormones ya antibiotics. Bilkul pure hai ki plastic de dabbyan ch nahi, balki glass कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
7: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
6: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 Main Road West, St. Albans, Ate 341 Lonsdale Street, Dandenong. For more info, call 0499-2535-45 te.
7: Ki hoya? Inni tension kyun letti hoyi hai?
8: Yaar ki dassa? Mortgage da kam aj vi nahi baniya.
7: Aj Simmi pehn ji aayi si. Unna ne apna mortgage UV Financial Services ton थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
8: अच्छा, असी भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर दें फिर ता।
7: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टैक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8830 और विजिट uvfinancial.com.au।
9: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
10: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
11: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
12: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
13: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
14: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक। वेखण जरूर आयो।
15: सोना चाहिदा,
16: भरोसा चाहिदा,
15: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
7: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया। हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन। पार्टे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
17: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थनु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। आज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252।
18: प्रीत, इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
17: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100 0451-1100। Desire Migration।
19: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señora.
1: Señorita.
2: आप तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए. चलो मैं आपको मेरे ससुराल ले चलो.
1: अरे क्या बात है. तो ससुराल वो ज्यादा टाइम नहीं लगे जाने ने परानो होने होने ने कहना होने की कमी था.
2: मैं जनवास मैं आपको नाश्ता कराने लेके चलती हूँ.
1: ठीक है आपके ससुराल का नाश्ता.
2: हाँ जी
1: क्या बात है. क्या है आपके ससुराल का नेशनल नाश्ता.
2: तो आपको पता है ना कि मैं इंदौर से हूँ. मतलब मेरे ससुराल वाले इंदौर के हैं. मैं तो कोटा से हूँ. मैं तो फिर भी अभी ये बोलती हूँ.
1: नहीं आप इंदौर से भी हैं. आप हाँ। कोटा से भी हैं. आप मुंबई से भी हैं. आप डार्बिन से भी हैं. अब आप मेलबर्न में भी हैं.
2: मैं तो अपने आप को बंजारन कहती हूँ. आई लव टू ट्रैवल एंड स्टिल ट्रैवलिंग है ना. तो विशाल जी जैसे मैंने आपको एक हिंट दे ही दिया है कि हम चल रहे हैं इंदौर की गलियों में. इंदौर की गलियां हैं और 6:30 या 7 बजे से आपको एक अलग सी खुशबू रेडियो पे दिखने लग जाएगी है ना. जैसे अब कह लो आप पंजाब में निकलो तो छोले कुलचे छोले भटूरे. दिल्ली में छोले भटूरे. पंजाब में छोले कुलचे. महाराष्ट्र में वड़ा पाव. तो वैसे ही हमारे इंदौरियों का जगत फेमस जिसको नाम भी इंदौर के साथ टच करके मिलता है. तो हम बात करने जा रहे हैं इंदौरी पोहे की.
1: इंदौरी मैं तो कला पोहू सुने तो ही नाल इंदौरी का तेला
2: नहीं अब इवन के
1: जे मैं कहूं मैं तनु गल सुनाऊंगा बटालवी पोहे दी ते फिर साडा हो जाऊगा.
2: नहीं नहीं इवन मतलब वो हो गया कि पोहा इज फ्रॉम इंदौर. मतलब इंदौरी पोहा एक अलग वाइब है ना. क्योंकि
1: कला पोहा पोहा या जेड़ा इंदौरी पोहा वो राजकुमार है.
2: हां
1: उन्होंने कपड़े पाए सोने.
2: इवन केबीसी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था तो उसमें उन्होंने अकेला पोहा नहीं बोला था इंदौरी पोहा बोला था. और आपको पता है 7 जून तो पोहा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. जी
1: क्या कर रहे हैं इंदौर वाले.
2: तो उस दिन 7 जून को आप देखोगे मेरे स्टेटस पे कि मैंने पोहा बनाया.
1: अच्छा आप भी नेशनल पोहा डे मनाएंगे.
2: जी मैं हर साल
1: पीली साड़ी पहन के
2: मैं हर साल बनाती हूँ अपनी किचन से. तो हम इंदौरी पोहा की हम बात करेंगे. अब आपको पता है कि बनता ये चावल से. अब इसकी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई. एक कहानी तो यह है कि चावल एक बार भीग गए बहुत ज्यादा वो वेस्ट ना हो तो उन्हें चावल को मतलब धान को सुखाया गया.
1: हाँ जी.
2: और फिर उसे कूटा गया तो फ्लैट हो गए वो. तो उससे वो पोहा बन गया. तो बनता भी इसकी प्रोसेस भी यही होती है. पहले चावल को भिगोया जाता है फिर उसे फ्लैटन किया जाता है फिर स्टीम करके रखा जाता है और फिर वो अलग अलग जगह ट्रैवल हो सकता है. बहुत दिनों तक चलता है. ठीक है अब बहुत दिनों तक चलता है तो ये इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि ट्रैवलिंग में भी ये बड़ी आसानी से आप ले जा सकते हो. खराब नहीं होता है. तो और उसके ऊपर टॉपिंग्स डलती हैं अलग अलग तरीके. सेब डालते हैं पोहे में. प्याज डालते हैं. अनार डालते हैं.
1: सब्जियां भी डालती हैं.
2: नींबू डालते हैं. अब तो वो हेल्थी पोहा अलग आ गया. और स्पेशली इंदौरी पोहा को इंदौरी बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला होता है जो चाट मसाले से थोड़ा हटके होता है. उसे बोलते हैं जीरावन. जीरावन
1: जीरा ज्यादा पाया होगा उन्होंने.
2: अरे वो बहुत ही बेहतर. मैं जब इंदौर गई ना आई विल गेट इट फॉर यू. या वैसे इंडियन स्टोर पे मिलता है जीरावन. तो वो जीरावन इज अ वाइब है ना इंदौरियों के लिए. तो वो तभी कंप्लीट होता है. और उसके साथ में अकम्प्लिश किया जाता है जलेबी के साथ.
1: जलेबी भाई.
2: तो सबसे फनी चीज ये है कि जिसको हम बड़े शान से बोलते हैं इंदौरी पोहा इंदौरी पोहा वो इंदौर का है ही नहीं. वो इंदौर का है ही नहीं. पर इंदौर
1: अभी तो आप इंदौरी पोहा कह रहे हैं.
2: वही मैं बता रही हूँ. इंदौर एक ऐसी जगह है ना विशाल जी. वहाँ कोई जाता है ना. एक बार मैं भी गई थी 11th में पढ़ने.
1: हाँ जी हाँ.
2: नहीं 11th
1: होके रह जाता है.
2: 11th में मैं एक शादी में गई फिर पढ़ने गई तो वहीं की होके रह गई.
1: मैं
2: इंदौर में अपनापन है तो पोहे ने वो अपनापन अपना के वो एक्चुअली.
1: हाँ जी.
2: पोहा ओरिजिनल है महाराष्ट्र का. महाराष्ट्रियन पोहा होता है. उसमें वो डालते हैं बहुत सारा कोकोनट कह लो कड़ी पत्ता और हरी मिर्च. तो वो महाराष्ट्रियन पोहा होता है. जब होलकर और सिंधिया फैमिली जब इंदौर आए ना जो वहाँ के शासक थे वहाँ के रूलर थे तो वो अपने साथ ना सिर्फ वहाँ का कल्चर लेके आए बल्कि वहाँ के खाने की रेसिपीज भी लेके आए. अब आपको पता है होलकर और सिंधिया फैमिलीज महाराष्ट्रियन थे तो महाराष्ट्रियन इन्फ्लुएंस थे. तो वहाँ की चीज़ों में सबसे ज़्यादा फेमस था पोहा. महाराष्ट्रियन अपने साथ खाने की चीजें लेके आए तो पोहा भी लेके आए. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पोहे में धीरे धीरे चेंजेस मतलब अलग अलग वर्जन बनने लगे. तो 47 में तो देश आजाद हुआ था. 48-49 के टाइम ना पुरुषोत्तम जोशी करके थे इंदौर के. उन्होंने पोहे को बाहर दुकानों पे मतलब अपनी दुकान पे बेचना शुरू किया, या कह लो रेडी लगानी शुरू करी. पहले तो वो रॉयल्स बनाते थे, सिंधिया और जो मराठे थे, है ना, ये लोग बनाते थे. लेकिन उसके बाद होलकर और सिंधिया. अब अगर इंदौर की बात करें ना, देवी भाई अहिल्या और होलकर फैमिली का है पूरा इंदौर. आज भी वहां पे किला भी है ना, और कॉलेज वगैरह उनके नाम भी होलकर कॉलेज.

0: ना वो नीचे पतीले में पानी रख के वो दिन भर वो स्टीम होके और बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही हल्का होता है, फ्लफी सा टेक्सचर होता है. और इसको जैसे मैंने बताई है जलेबी के साथ अकम्प्लिश किया जाता है. कई जगह इसको पीनट्स के साथ सर्व करते हैं, कई जगह इसको मटर के साथ सर्व करते हैं. और महाराष्ट्रियन पोहा में स्पेसिफिकली डलता है कोकोनट और कड़ी पत्ता. गुजरात का जो पोहा होता है वो मीठा होता है, और यूपी का जो पोहा होता है वो होता है तीखा. और इवन जबलपुर एग्जैक्टली जबलपुर वाली साइड ना विशाल जी पोहा मिलता है तरी वाला, बहुत ही अलग तरीके का होता है पर बहुत डिलिशियस होता है.
1: तरी ग्रेवी टाइप तरी
0: ग्रेवी वाली है ना, ग्रेवी वाले उसको बोलते हैं उसल उसल या मिसल पोहा कुछ. वो महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो स्पाइसी सी ग्रेवी होती है. तो बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा फनी इस चीज में ये लगी थी कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड फेमस बनाया हुआ है पोहा, वो इंदौर का है ही नहीं. वो आया महाराष्ट्र से, पर महाराष्ट्र से ज्यादा क्लेम हुआ वो इंदौर में. और इंदौर से तो आज इवन प्रीमिक्स पोहा भी मिलता है, उस पर भी लिखा होता है नाम इंदौरी पोहा. पर मेरी ये टिप है, अगर आपको पोहा घर पे बनाना है पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, तो इंडियन स्टोर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे थिक पोहा चूज करें. अगर आप गलती से भी थिन पोहा ले आए ना, तो वो आप मतलब पंजाबी में कहना लिगड़ हो जाना है सारा,
1: लिगड़
0: ना उसकी खिचड़ी बन जाएगी, पोहा नहीं बनेगा. पर आप थिक पोहा लेके आए और अल्टीमेट सा पोहा बनाए, उसे नींबू निचोड़ के
1: खा को लेना.
0: अब तो कितने जैसे मैं अपने बात हमने बात करी हेल्दी वर्जन, उसमें यू पुट इट लॉट्स ऑफ वेजीज, गाजर डाल दो, बीन्स डाल दो, मटर डाल दो, कॉर्न्स डाल दो, है ना, ये तो आप हेल्दी वर्जन कर सकते हो. और एक चम्मच तेल में ही बन जाता है आराम से. और उसके बाद अगर आपको हेल्दी वर्जन करना है तो आप इसको जो जैसे चिया पुडिंग बनती है ना, उसको धो के वार्म वाटर से उसमें चिया सीड डाल के दही डाल के हल्का सा राई का तड़का लगाओ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है. So this is poha.
1: Nice.
0: Yeah.
1: Pohe ke saath chai ho jaye.
0: Chai aur poha aur jalebi is ultimate.
1: Aur wo bhi ho jaye barf mein baith ke. क्योंकि बर्फ में बैठ के इसलिए क्योंकि पिछली एरिया पर दस ऐसे कि 100 साल हो गए माउंट बुलर एंड अनदर प्लेस इज माउंट बाबा.
0: ओके
1: बाबा तां लगूगा वे कितन दी जगह पर ओरिजिनल्स वालों दिता गया एक शब्द है जिसका मतलब हुंदा इको कि गूंज के आउणी है आवाज जेड़ा कि उत्थों दी जोग्राफी नूं बड़े वधिया तरीके नाल दस दिंदा है उत्थों दा जेड़ा इलाका ही है इदां दा पी उतार चढ़ा जिहा वाला.
0: और अक्सर अगर हम पहाड़ों में जाते तो चीखते हैं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो रिपीट होती है. ओके
1: सो इस एरिया दे विच एक समय हंटिंग कीती जांदी सी जां मौत बहुत ज्यादा लभदे सीगे जिहड़ा कि ट्रेडिशनल फूड सीगा पहिलां ओरिजिनल दा. यूरोपियन एक्सप्लोरर जिहड़े 1800 दे करीब इत्थे आउंदे ने जिहड़े कि क्योंकि इत्थे डेंस फॉरेस्ट सीगा टिम्बर सीगी लकड़ बहुत ज़्यादा वधिया सी इसे करके एक समय इत्थे नूजा पिंडा कोली उत्थे नूजे ट्रेस्टाइल ब्रिज आ वो लकड़ दा पोलिया हले भी हवा च खलोता है तुसी उहदे उपर जाके नीचे जाके फोटो खिचा सकदे पर उत्थे पहलों पटरी रेल लंघदी हुंदी सीगी एंड तुसी वेख के हैरान होगे भी लकड़ दा पुल तेरे तो रेल लंघाउंदे रहे एंड स्टिल इन इंटैक्ट. ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਵੈਦਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਸੋਨੀ ਹੈਗੀ.
0: ਅੱਛਾ
1: ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਘੋੜੇ ਗਧੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿੰਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੋਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੁੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਕੀਂਗ ਦੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੁਲਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੇਮਸ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਲਵ ਫਰੋਗਸ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਯਸ਼ੀ ਯਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਿਲਦੀ ਬੌ ਬੌ ਫਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: टेंशन टेंशन नीरी टेंशन
2: की होया
1: अते इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी कर दे हां। कांटेक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
4: जदों घरेलू बिजली दे काम दी गल आउंदी है ता इस नूं खुद ना करो। DIY डोंट डू इट योरसेल्फ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ YouTube ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਚਲਾਕ ਜਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ DIY ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। energysafe.wic.gov.au ਤੇ ਜਾਓ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम, हेरिटेज टूर 2026, डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
5: होलावा इश्क दे अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दिया जड़िया खुमारियां।
4: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवो अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लई कॉल करो 0426809499। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाए।

0: नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
1: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
2: ये हिंदवी स्वराज जवाब है, ही तरश्रींची इच्छा।
3: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.

दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिलों प्यार भुलाया जांदा नहीं। दिल बेच के दिल बरमा ही तो, दिलों प्यार भुलाया जांदा नहीं। सिर रख के यार दे कदमां ते

0: की होया एनी टेंशन क्यों लेती हो ये
1: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
0: आज सिमी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
1: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au प्रीत की होया
2: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना लगदा इंडिया वापस जाना पैना
0: जे तुसी भी इना देवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा परमानेंट रेजिडेंसी स्टूडेंट वीजा टीआर पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज नंबर लिखो 045-151-1100 Desire migration. Sona chahida.
3: Parosa chahida.
0: Quality te buyback vi chahida. Chale aao. Delhi Jewelers. Stockland Point Cook vikhe. Jithe buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds, ate gemstones. Custom jewelry thwade order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida. Gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jaga. Te ovi wajab rate te. Delhi Jewelers. 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042. Opit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर House and Land Experts Opit Homes अपने 44 वर्यां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24-month price lock अज ही पहुंचो Opit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
4: ते
5: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
6: हां जी रेडियो
7: Check it. Okay, no intro, just Mr. Shindar, myself HMC, and we're back with a brand new flow. And let's roll.

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802522
1: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक देखण जरूर आयो।
2: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-8-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी हां जी।

0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
1: हाँ जी हाँ

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503।

0: या 90-77-97 33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो अड्डे नाल।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: Oh!

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: हां जी

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Oh,

मन जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोचोटा ने खा, मनै जम कै साथ न जाय, ऐसा नाम।

जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाक सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवट हत्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पाख खाए।

जेता कीता तेता नाओ विनावै नाई कोथाओ कुदरत कौन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी तोते पुत्र सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ तोए परिये मत पापा कै संग ओ तोपे नावे के रंग पुन्नी पापी आखन नाए कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोय विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी परमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती मां कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पाया का दिया जे लिखन लेख पुराण हितवार न जोगी जान रुत महा न कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाए ए अंत

जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सोए कावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै फीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद मनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप कां किया गल्लां कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िए सुरां सिदां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महामलसूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा कां के रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै का अंत।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जाति हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तेर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जांग प्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तंग तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेती अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाथे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्वदिशंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महिमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष्य कंस आदिष्टे तर्म सर्वां परिणांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेशय के आभिज भेषय के आगाज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनूपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीमय के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गनी बुल शिकस्ते गरी बुल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अपार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करनाले हर काले है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है भाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार धन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दले।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा अनंज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, अवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

0: लड़ी बार गुरबाणी नी पावन कथा ए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंग 1077 दे उते सुभाईमान है। ते मारू राग दे अंदर मारू सोलहे सिर लेख है बाणी दा पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज गुरु अर्जन प्रतख हर महाराज साहब जी ये पावन पवित्र उपदेश मारू राग दे अंदर बख्शदे ने। इत्थे जदों सरोवर दी सेवा होई ते अमृतसर साहब सरोवर विच जल भरिया ते एक सिख की करे भी उहदे विच अपना वार वार चेहरा वेखे कदी मुछां नूं वट दवे कदी दाड़े ते हथ फेरे कदी पग दे उत्ते हथ फेरे ते महाराज जी उहनूं कहण लगे हे गुरसिखा सूरत देख ना भूल गवारा इहदे गवार बेसमझ मूर्खां वाले काम ने। कहिंदे अपनी सूरत वेख के ते इहदी सुंदरता दे विच भुल ना जावी किते वी मैं बड़ा सोहणा हाँ। अथवा कहिंदे जिहड़े पराए रूप पराईआं सूरतां वेखणीआं ने उहनां नूं वेख के हे गवार हे बेसमझ काम करो लो मोह हंकार विच फस जाएगा। वेखी किरे भुल के भी पराए इस्त्रियां दे पराए पुरखां दे सरूप वेखण दे च ना फसिया रही जा अपने आप दी सूरत दे उत्ते ही माण ना करी भी मैं बहुत सोहणा हाँ।
1: मिसन मोहारा झूठ पसारा
0: महाराज जी कहिंदे भाई मिसन मोहारा जिहड़ा ए मोह आदिक है ना शरीरां दा इह सब कुछ मिथिया है ते सारे जगत का पसारा है भी झूठा है। भाव जगत की जिहड़ी रचना है दृष्ट मान है सगल मथेना जो भी अखां दे नाल वेख रहे हैं सारा कुछ महाराज कहिंदे मिथिया मिथिया कहिंदे ने भी जिहड़ी चीज होवे ना पर प्रतीत होवे उहनूं मिथिया कहिंदे ने। जे मारू थल दे जदों गर्मी दे विच सूरज तपदा है ना ते ओदियां जदों किरणां रेत ते पैंदियां हन तां हिरन नूं इदां प्रतीत हुंदा है वी इत्थे पाणी दी नदी वह रही है पर असल विच ओह रेत चमकदी है पाणी हुंदा नहीं। वी जिहड़ी चीज़ मिथिया होवे महाराज जी कहिंदे भाई झूठ पसारा इह संसार दा जिहड़ा पसारा इह झूठा है अते इह संसार दा जां शरीरां दा जिहड़ा मोह करना है ये भी महाराज जी कहिंदे मिथिया अण होया ए।
1: जग मह कोई रहण ना पाए
0: संसार दे च कोई रहना नहीं पाउंदा रहण ना पावे सुर नर देवा उठ सुधारे कर मुन जन सेवा। अथवा महाराज कहिंदे बादशाह साहवा पारी मरना जो दिशा सो काले करना जगत दे च कोई रह नहीं सकदा तू की अपने आप नूं की समझदा है भी मैं कदे संसार दे च इत्थे सदा बैठे रहना। महाराज जी कहिंदे रहना नहीं पावेंगा भाई अथवा इस जगत विच चौवां जुगां वाले संसार च चौवां जुगां दे च कोई भी सदा रह नहीं सकिया नहीं रह पावेगा।
1: निह चल एक नारायण
0: केवल एक नेचर अचल रहन वाला केवल नारायण परमेश्वर है आवे न जावे मेरा प्रभ अविनाशी वाहेगुरु नाश तो रह ते ओ आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच है ओ वाहेगुरु सदा रहन वाला है बाकी सब जगत जान वाला है नाशवंते।
1: गुरपुरे की पाओ सरणाई
0: इस करके महाराज जी कहिंदे मोह छड के एवें भरम भुलेखियां दे चो निकल के ते पूर्ण सतगुरु नानक देव महाराज ने श्री गुरु साहिब सब उपर मन ब्रज कलम सेवी है सच्चा कहिंदे भाई सारियां तों उत्ते सतगुरु साहिब जी हन। सतगुरु दी सेवा मन करके बाणी करके शरीर करके करना कर ते सारे पासिओं अपनियां आसावां मुका के ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਕਰ।
1: ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈ,
0: ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਰ ਜਗ ਸਤ ਹੈ, ਪੰਚੋ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਮੇਲ ਦੇਣਗੇ।
1: ਏਕੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਔਖਦ,
0: ਮੋਹ ਸੋਗ ਤੇ ਫੇਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਗਮ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੇੜਦੇ ਨੇ? ਏਕੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਔਖਦ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਪ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਰਤ ਪਰਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣਾ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ,

0: सच्चा जो परमेश्वर का नाम है गुरबाणी दे द्वारा उस परमेश्वर दे गुण गाउणा कर।
1: जिस नाम का तरस है बहु देवा।
0: देख परमेश्वर का नाम हर एक नु नहीं मिलदा, जेड़े देवते हन बड़िया समाधियां लाईया, बड़े उन्होंने योग साधे, देवते तो बन गए पर परमेश्वर का नाम नहीं प्राप्त होया। जिस वाहेगुरु दे नाम नू सारे देवते भी लोचदे ने,

0: इस परमेश्वर की प्राप्ति दे वास्ते वाहेगुरु की भगती टहल रूपी सेवा करते हैं।
1: अनाथ नाथ दीन दुख भंजन
0: अकाल पुरख वाहेगुरु सारिया का मालक है, ओदा कोई मालक नहीं। ते जड़े अनाथ ने उन्हां दा नाथ मालक बन के ते दीन गरीबां दे दुख भंजन नाश करन वाला है।
1: सो गुर पूरे ते पाएड़ा
0: जिहड़ा ऐसा वाहेगुरु है ओ भाई आपो ही प्राप्त होवेगा। पूरे सतगुरां दी शरण विच आ के वाहेगुरु दी प्राप्ति हुंदी है।
1: होर दुवारा कोई ना सूझै
0: होर संसार दे विच महाराज कहिंदे वी सानू ते नहीं होर द्वारा कोई सूझदा। दसवें पातशाह इसे करके कहिंदे ना सगल द्वार को छड़ के गए ओ तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार फिरत फिरत प्रव आया परया तौ सरणाए होर द्वारा कोई ना सूझै। संसार दे विच होर कोई भी एहो जिहा दर सूझदा ओढ़दा नहीं है जिथों नाम दी ते मुक्ति नहीं प्राप्ति होवे गुरां बिना।
1: त्रिभवन धावै ता किछु न बूझै
0: जीव कहिंदे तिन्ना लोकां दे विच भरम के आ जे तिन्ना लोकां दे धक्के खा लवे तां वी इस दे ताहीं कुछ बूझ कोई समझ प्राप्त नहीं हुंदी। जिहड़ी समझ सतगुरां दी शरण विच आया मिलनी है। जो उपदेश गुरां ने बख्शना है तिन्ना भवना दे विचों वी उह समझ नहीं मिलनी।
1: सतगुर साहो भंडार नाम जैसा
0: सतगुरु महाराज साहिब जी कहिंदे शाहूकार ने सज्जन सच्चा पातशाह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने भंडार नाम जिन्हां दे पास परमेश्वर दे नाम दे भंडारे भरे पए हन।
1: एहो रतन तिसै ते पाएड़ा
0: जिहड़ा ए शब्द रूपी रतन है ए वी ते सतगुरु साहिब जी दे कोलों प्राप्त हुंदा है। गुर का शब्द रतन है। बलवाना ने लिखिया ए वी हंसां दा जोड़ा 12 साल सुचे मोती खावे ते फिर एक रतन उगलदा है। एडा कीमती रतन है ते महाराज दा जो नाम रूपी रतन है ते सतगुरु साहिब जी दे पासों प्राप्त हुंदा है।
1: जाके धूरा करे पुनीता
0: जे सतगुरु महाराज जी दी चरण धूड़े साध संगत दी चरण धूड़े गुरसिख दे ताई पवित्र कर दिंदी है। जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई विशे वकारां दी मैल धो दिंदी है।
1: सुर नर देव ना पावै मीता
0: महाराज कहिंदे हे मित्र तैनूं गुझी गल दस दे वी देव ते मनुख अते श्रेष्ठ पुरख ओह वी सतगुरु दी चरण धूड़ी नूं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकदे।
1: सत पुरख सतगुर परमेसर
0: महाराज सतगुरु कौन ने जिन्हां दी तुसीं इन्नी महिमा करदे हो। पातशाह कहिंदे सत पुरख सतगुर परमेसर कहिंदे भाई जो सत पुरख है ना त्रई काल बाद परमेसर सतगुरु नानक देव

0: धन पदार्थ सब कोई महापुरखा दे अगे रख दिता है।
1: सेवा सुरत ना जाड़ा काई।
0: अते फिर ओ एदां बेनतियां करदा है, हे वाहिगुरु मैं तेरी कोई सेवा करन दी

0: भी तिना गुणा तो रहत। जदों साडे संबंधत आवे उदों भाव है भी असीं औगण वारे हाँ। निर्गुण को संग लियो मलाए, हे महाराज बिनो करो सुन पातशाह। मैं बगला तेरा सिख, दाम हित जतन मैं बहु करो, तुम मिलने दी नहीं सिख। सुबह होत है नित ही, होत निता प्रत सांझ, सोदर चौंकी ना सोयला, ना जपूं वाहेगुरु नाम। पांच बाणी न पढ़ूं, ना करूं प्रभात इशनान, कथा कीर्तन इतिहास न लायो प्रेम ध्यान। सिख मेरे सम को नहीं ऐसा मन में मान, मन टिक्यो मम कबे न। मनजीत सिंह है नाम, ऐब औरन के प्रगट करूं, मैं आपन करूं शपाम जी। गुरु नानक गोबिंद सिंह जी करिए मोहे भेखी कल्याण। इनू कहिंदे ने निर्गुण यारा, भी गुण कोई ना होना, ना बाणी पढ़नी, ना सेवा करनी, ना सिमरन करना, ते कहना भी मेरे अर्गा कोई महान ही नहीं। महाराज असी निर्गुण यारे हैं, ते कृपा करके सानू अपने नाल मेल लवो, ला लवो संगत विच।
1: कर कृपा मोहे टहल लाए,
0: आप कृपा करके ते मैनू अपनी टहल लावो। टहल होंदी है भी जेहड़ी निष्काम सेवा बख्श दियो।
1: पक्खा फेरा पीसा संत आगा,
0: संगत दी महाराज जी सेवा करा, पक्खा चला गर्मी दी रुते, अते दाने पीवा संतां दी आग्या विच चलना करां। संसार वल्लों पख फेर नूं पी पखा फेरां, अते फेर काम क्रोध नूं नाम दी चक्की रेज पा के पी रहा, दे संतां दी आग्या विच रहां।
1: चरण धोए सुख पाए,
0: साधुआं दे संग दे चरण धो के मैं आत्मक सुख पावां।
1: बहुत द्वारे भ्रामे भ्रामे आया,
0: महाराज बड़े दरां दे उत्ते बड़ियां जूनां तों भरमदा भरमदा हुण मैं आप जी दी शरण आया हां।
1: तुमरी कृपा ते तुम शरण आया,
0: अज तरस पया मेरा मतोई, सतगुर सज्जन मिलिया, तुहाडी कृपा दे नाल ही मैं तुहाडी शरण नूं प्राप्त कीता ए।
1: सदा सदा संतह संग राखा,
0: अज सदा सदा अपने संतां दी संगत दे नाल मेल के रखो।
1: एहो नाम दान देवाएड़ा,
0: ए परमेश्वर जी सानू अपने नाम दा दान ही संगत दे कोलों दवाउणा करो।
1: भए कृपाल गुसाई मेरे,
0: जदो जग्यासु ने बेनती कीती ता महाराज कहिंदे फिर मेरे मालक जी मेरे दे कृपालू हो गए।
1: दर्शन पाया सतगुर पूरे,
0: अरे पूर्ण सतगुरु अकाल पुरख दे गुरु नानक दे महाराज दे दर्शन प्राप्त होए।
1: सुख सहज सदा आनंदा,
0: ते दर्शना दा सदका सहज अवस्था अचुत सुख, ते सदा रहण आला नन प्राप्त होया।
1: नानक दास दसाएड़ा,
0: महाराज जी कहिंदे भाई दासां दा भी दास हो के रहना कर, जे गुरां दीआं बख्शां प्राप्त करनियां ने। महाराज जी ने परम पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है, गुरु पातशाह अते गुरु महाराज जी दी संगत बख्शेंदे बख्शन हारे, होइयां अनेकां भुलां गलतियां बख्श देनियां, देहो सज्जन आसीसड़ियां। जो होवै साहिब स्यों मेल, सतगुरु महाराज साडी सारिआं दी यात्रा सफली करन।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। क्या आपने किसी को कभी SMS या WhatsApp पर मैसेज किया है? ये करने के बाद हम में से कितने लोग हैं जो बार बार अपना फोन उठाकर मैसेज के रिप्लाई का इंतजार बेसब्री से करते हैं? अभी आ जाए, क्यों नहीं आया जवाब? उसने मैसेज देखा भी होगा या नहीं? यहां तक देर होने पर कॉल करके सामने वाले को मैसेज देखने को भी बोल देते हैं। क्या होता जा रहा है हमें? हमारा मन बिना किसी कारण कितनी जल्दी बेचैन हो जाता है। एक छोटा सा मैसेज लेट हो जाए, कोई हमारी बात का जवाब ना दे या जीवन हमारी इच्छा के अनुसार ना चले तो मन तुरंत चिंता और ओवरथिंकिंग में डूबने लगता है। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एंजाइटी से जूझ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ। आगे इसका हल भी बताऊंगा छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं आप पुण्य दर्शन। हम और आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं वो कोई नई बीमारी नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक व्यक्ति बिल्कुल इसी स्थिति से गुजर रहा था। जी हाँ, ठीक पहचाना, वो था अर्जुन। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और वे अंदर से टूटने लगा। सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे युद्ध के लिए। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत। उस समय अर्जुन ने अपने सारथी बने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और उनसे प्रश्न पूछा कि हे माधव, एक शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति कैसा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि चिंता तब पैदा होती है जब हम हर परिस्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। कोई हमें इग्नोर कर दे, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरे या जीवन हमारी योजना के अनुसार ना चले तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को केवल देखना और समझना सीख जाता है बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, वही धीरे धीरे शांति को प्राप्त करता है। समझे या नहीं, चलिए आपको एक कहानी के साथ समझाता हूं। मैं यूं गया यूं आया, आप कहीं मत जाइए।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो एंजाइटी को पहचानिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी किनारे बैठा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया और गुरु को अपशब्द कहने लगा। शिष्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरु शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास गुरुदेव। गुरु बोले, उसी प्रकार उसका क्रोध और अपमान भी उसी के पास रह गया, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। जब हम हर बात को अपने दिल और दिमाग पर लेना बंद कर देते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम कर देता है, वही अंदर से संतुष्ट रह पाता है। क्योंकि एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है हर चीज को अपने इच्छा के अनुसार चाहना। इस कहानी का सार यही है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है। जब हम हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, जब हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर देते हैं और जब हम अपना मन श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, धीरे धीरे एंजाइटी हम पर अपना प्रभाव खोने लगती है। तो ओवरथिंकिंग से संघर्ष कर रहे हो या एंजाइटी का, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यान से मनन करो, चिंतन करो, सोचो और अपने जीवन में अप्लाई करो। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: खुशबू के टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: प्रीत की होया?
6: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवां थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नू। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, टीआर, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100 0451-111-00। Desire Migration Melbourne दे South East इलाके दे सारे builders ते bricklayers ले खुश खबरी। तुहाडी हर building दे structure दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने Oz Lintels। Oz Lintels supply कर देने सारे sizes दे galvanized brick lintel, T-bars, equal and unequal angles। असी करा दे विच steel fabrication supply अते install भी कर दे हां। Contact 0423-102-900 Email sales@ozlintels.au।
7: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: यूथ जस्टिस वर्कर दे तौर ते तुसी हिरासत विचले नौजवानां दी सहायता करोगे। ए एक सुरक्षित नौकरी है जिस विच तनखा समेत ट्रेनिंग अते तरक्की दे मौके शामिल हन। जे तुसी एक सहायक टीम नाल सफल अते संतुष्टि भरे पेशे दी भाल कर रहे हो तां यूथ जस्टिस करियर्स लिख के भेजो। ऑथराइज्ड बाय विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबर्न।
2: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
3: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
4: ये हिंदवी स्वराज जवाब है ही तरशीन चेचा।
5: Book your tickets now for Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan and Vidya Balan. Releasing in cinemas on 1st May.
6: Ki chahida? Australia da visa lona? Ja visa le mashwara chahida? Mil juga. Sidde aao. Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diyan visa loda layi ik parose yogna. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, dama, parent, partner te visitor visa vich deal karde ne. Hune call karo. Pritinder Garewal 0490-054-596 गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
7: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
8: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ ताजे।
9: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
10: मैं उठूं भी मुड़ के
7: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
9: उन देखना ना भूल दियो। 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: लेयर्स लिख खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।

0: ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 03908-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
1: किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाडे करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
2: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
2: आज सिमी पैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
3: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दे फिर ता
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8330-11 ओ विजिट uvfinancial.com.au
4: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
5: 04-43-465-492

0: इंडिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके, टीचिंग में करियर बनाए। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत
2: ACMI तुहाडा फिल्म टीवी अते वीडियो गेम्स दा म्यूजियम है जो कि फेड स्क्वायर ते रोजाना खुलता है। साड़ी मुफ्त द स्टोरी ऑफ द मूविंग इमेज ते जाओ, पर्दे दे पिछे दियां कहानियां देखो, बनाओ अते पड़चाल करो। 2 to 5 साल दी उम्र दे बच्चियां लई प्ले स्कूल कम एंड प्ले नू ना भुलो। एक मुफ्त प्रदर्शनी जो ऐप पड़चाल करदी है कि प्ले स्कूल दा एक एपिसोड किवें बनाया जांदा है। साड़ी सिनेमा घरां विच एक फिल्म देखो, दुकान ब्राउज करो जां कैफे विच कॉफी लो। ACMI.net.au ते देखो की हो रहा है।